0: हे दयालु सबके पालनहार, आई इंप्लोर यू, प्लीज प्लीज ब्लेस दिस न्यू वेंचर ऑफ आर मोस्ट डियर श्री अमित कुमार. मेक दिस फिल्म अ सुपर हिट फॉर सर, फॉर विदाउट यू दिस फिल्म कैनॉट बी अ हिट. यू हैव टू डू एवरीथिंग. देर इज नो वन एल्स हु कैन हेल्प दिस ग्रेट प्रोडक्शन यूनिट एंड अमित कुमार जी विदाउट यू. हे वेंकटेश्वरा, हे वेंकटेश्वरा, प्लीज डू एवरीथिंग सर, प्लीज.
1: Even during the muhurat of the last Telugu film, Maya Bazaar, they said the same thing to me.

0: Are you okay, sir?
1: Oh, I'm okay. I'm okay.
2: Sir, कमाल कर दिया सर, आप तो महान हैं।
3: वाह वाह, तुसी तो तोप हो सर।
4: अमित जी, टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर यू। यू हैव बीन डिक्लेयर्ड द अवार्ड विनर फॉर द बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट कॉस्ट्यूम, ऑल फॉर योर लास्ट फिल्म माया बाजार।
5: इज दैट सो? ओ गॉड, आई कांट बिलीव दिस।
6: Sir, please see that you adjust your diary and are present at the awards function on time, sir. Please, sir.
7: Secretary.
4: Yes, sir. Yes, sir.
7: Please note the time of the awards function. Find out the dress code. You know I have to look the best.
5: And what about me? Am I not invited?

0: And now, ladies and gentlemen, I call upon Shri Lalu Pashupati Nath, our revered minister for information and broadcasting, to come upon stage and give away the awards of the day. Shri Pashupati Nath Ji.
1: भाइयों और बहनों, आज की रात बहुत सुहानी है और अब मैं पेश करने वाला हूं द बेस्ट फिल्म अवार्ड फॉर द ईयर 2005। फिल्म है माया बाजार। मैं हीरो श्री अमित कुमार जी को फिल्म के यूनिट की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे मंच पे आएं और ये अवार्ड स्वीकार करें। श्री अमित कुमार जी।

जो अनहोनी होए एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है परो आज कह काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कछु न होत उपाय नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय संग सखा सब तज गए को न निभे ओ साथ कहो नानक एह बिपत मैं टेक एक रघुनाथ नाम रहयो साधु रहयो गुरु गोबिंद कहो नानक एह जगत मैं किन जपयो गुरमंत राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोए जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रखी उरतारो तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच परंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बेलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंच महर्ख दिसाग सुनावे बंगालम मदमाद वगावे राग माला राग एक संग पंच परंगन संग अलाप आठो नंदन।

ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत। अष्टपुत्र भैरव के गावह गायन पात्र। द्वितीया माल कौशकिया लापै संग रागनी पांचौ थापै। गोंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी। तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई। मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशको भारा। खौ खटियौ पहोरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए। पुण्य आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत। उठह तान कलोल गायन तार मिला वही। ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई। सरस अहीरी लै पार जा संग लाई पांचो वार जा। सुरमानंद पास कर आए चंद्रबिंब मंगलन सोहाए। सरस बाण औ आहे बिनोदा गावै सरस बसंत कमोदा। अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी। कशेली पटमंजरी टोडी कही अलाप। कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप। कालंका कुंतले और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा। गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना। सब मिल श्री राग वै गावै पांचौ संग बरंगन लावै। बैरारी करनाटी तरी गवरी गावै आसावरी। तेह पाछै सिंधवी आलापी श्री राग स्यो पांचौ थापी। सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर। अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर। खष्ट मेघ राग वै गावै पांचौ संग बरंगन लावै। सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुनगुनी। ऊचै सुरसूहो पुन कीनी मेघ राग स्यों पांचौ चीनी। बैरा तार गज तर के दारा जबली तर नट औ जल तारा। पुन गावै शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा। खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस। सबै पुत्र रागन के अठारह दस बीस। खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस। सबै पुत्र रागन के अठारह दस बीस। वाहे गुरु जी का खालसा।

अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमरै कर रावण दे आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपया वंड के छकिया देख चलाही तेग माही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसीस दित्ते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवां मत उच्ची मत पतकारा खाप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाण दी सेवा करदियां अनेका भुल्लां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदियां अनेका भुल्लां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति होई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनिया पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदियां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहराया।